अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है हम में से कितने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले यस्टरडे की चिंता करते हैं? कल उसने मुझसे क्या बोल दिया था, कल मेरा ये काम रह गया था, कल ऐसा हुआ था, कल वैसा हुआ था। तो सुनिए दोस्तों, कल जो था वो एक ड्राफ्ट था और वो कल की बात थी, और आज जो सुबह मिली है ना, ये एक ब्लैंक पेपर है। अगर पुरानी गलतियों को बार बार लिखते रहेंगे तो नई कहानी कब बनेगी? आज का फंडा बहुत सिंपल होना चाहिए। पास्ट को डस्टबिन में डालिए और आज को रीस्टार्ट कीजिए। कल क्या हुआ, फॉरगेट अबाउट इट, और आज क्या हो सकता है, लेट्स फोकस ऑन डैट, राइट? आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: इट हैपन सुन रहे हैं आप मेरे साथ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय करें। आई होप कि आपको इस मॉर्निंग मजा आ रहा होगा, और जिन्होंने अभी अभी में ज्वाइन किया है उन सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप आ गए हैं इट हैपन्स में सताक्षी के साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज सुबह उठते ही आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया, तो क्या आप कहेंगे? मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी ऑफिस की बॉस, हाँ लेडी बॉस है ना, हाँ ज्यादा ध्यान तो फिर वहीं रहता है। तो मतलब कोई कैसा गोल, कोई कैसा ड्रीम, कोई कैसी बात जो सुबह उठते ही सबसे पहले जहन में आ गई, यार आज तो मेरी ये वाली मीटिंग है, यार आज तो मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी, जो भी वो पहला थॉट जो आपके माइंड में आया वो क्या था, मेरे साथ शेयर कीजिए ना रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। बताइए मुझे, स्पेशली फेसबुक पेज पर मैं एक्टिव हूँ, मुझे बताइए कि क्या है वो इस वक्त का थॉट जो आज सबसे पहले सुबह आपके माइंड में आया। मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपन्स।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टो

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जहाँ इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्पानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ हो रही हैं आज की सुबह कुछ जबरदस्त बातें। दोस्तों आजकल हम सब कितने बिजी हैं ना, टेक्स्ट मैसेज फास्ट हो गए हैं, लेकिन बातें बहुत छोटी हो गई हैं। हम हाउ आर यू तो मैसेज पर सेंड कर देते हैं, पर सामने वाले का जवाब ध्यान से सुनने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बोलते गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते सिर्फ बोलने के लिए हैं, समझने के लिए नहीं। तो आज अगर किसी अपने को कॉल करिएगा तो उसको सुनिएगा बिना किसी एडवाइस दिए, बिना किसी ताने के, देखिएगा वो रिश्ता कितना हल्का महसूस होगा आपको। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701 AM।

बात बताइए, आपको कभी लगता है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हैं पर बदले में आपको वो केयर नहीं मिलती? ये पेन तब होता है जब हम दूसरों से वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो हम उनके लिए फील करते हैं। दोस्तों, हर कोई आपकी तरह प्यार नहीं कर सकता, हर कोई आपकी तरह एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता। रिश्तों में थोड़ी जगह देना और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना ही पीस ऑफ माइंड की चाबी है। बाउंड्री सेट करना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ केयर होती है। आइए इसी बात पर सताक्षी को सुनिए और सुनते रहिए छापन्स रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

जय छात्र एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर। दुनिया को खुश करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। तो आज का मेरा सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, आप परफेक्ट नहीं है और ना कभी हो सकते। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, पर पता है क्या, कोई भी आप जैसा नहीं है। आप अपनी कार्बन कॉपी हैं और जितनी मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो काफी है। और उसी काफी वाली मेहनत के नाम एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए छात्रंस। जी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी मेरे साथ।

ये था आज का इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ साथ। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी और आपको लेकर चलूंगी आपके सपनों की ओर। कल फिर से हम और आप करेंगे जिंदगी की कुछ खास और जबरदस्त बातें, लेकिन अब आज के सफर से ये वक्त हो गया है विदा और इजाजत लेने का। सो मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 एफएम ते संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो बॉलीवुड विच ना अक्सर कहा जाता है कि फिल्मा दो तरह नाल इतिहास बनाउंदियां ने। एक रिलीज़ तो पहला हफ्ते विच करोड़ों रुपए कमांदियां ने ते रिकॉर्ड बुक विच दर्ज हो जांदियां ने ते दूसरा वो जो थिएटर विच भावें ही वधिया परफॉर्मेंस ना करन पर दर्शकां दे ज़हन विच सालां तक जिंदा रहिंदियां ने। ते ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर ने जिन्हां ने 5 दहाकियां तक फिल्म इंडस्ट्री ते राज कीता। ब्लॉकबस्टर बॉबी तो दे लीड रोल दे तौर विच शुरुआत करन वाले ऋषि कपूर ने अपने पूरे करियर विच सिर्फ कमर्शियल फॉर्मूला फिल्मा दे पिछे नहीं भजे। यही वजह है कि उन्होंने फिल्मी ग्राफ विच कई बेहतरीन कहानियां शामिल हैं जो रिलीज दे समय का बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई पर आज जो फिल्मा हर सिनेमा लवर दी बकेट लिस्ट विच जरूर ने। दस दी उन्होंने बेस्ट बेस्ट वाली फिल्मा दे बारे विच पर पहला सुनो एक गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

जी तो वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो दसवानी वन सर ओवानी एम ते चार चे संदेश अलग दिन आल सी बने हुए ऋषि कपूर दी दी बेस्ट फिल्म जिहड़ियां थिएटर से फ्लॉप रही पर सदाबहार है ने उन्हां दे विच पहला नाम आंदा हैगा जी मेरा नाम जोकर जो 1970 दे विच आई सी। जद भी बॉलीवुड दी सब तो वड्डी ते शानदार फिल्म की गल होगी तो राज कपूर की इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र हमेशा सब तो पहला किया जाएगा। ऋषि कपूर ने इस फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के नाल नेशनल अवार्ड जीतिया। फिल्म की कहानी एक जोकर की जिंदगी तीन वक् वक् पड़ाव उसके अधूरे प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। ऋषि कपूर ने इस राज कपूर के बचपन का रोल निभाया। रिलीज होने फिल्म इन बुरी तरह फ्लॉप हुई कि कपूर परिवार कर्ज विच डुब गया क्योंकि दहाकियां दर्शकां नूं ना इसका लंबा रन टाइम अते गहरा इमोशनल कंटेंट पसंद नहीं आया। पर सालां बाद जद फिल्म नूं दुबारा देखिया गया तां इस नूं एक टाइमलैस मास्टरपीस मनिया गया ते अज दुनिया भर विच सब तो ज्यादा देखी जाण वाली अते सब तो वड्डी कल्ट फिल्मां दे विचों एक हैगी है।

अंजी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी वंसर ओवर एम ते जी आचे संदेश और दिनाल से बने हुए। अगला जिहड़ा नाम है जी वह है बहुत ही शानदार जी मूवी कर्ज, जो 1980 आई सी। सुभाष कई दे डायरेक्शन विच बनी कर्ज एक जबरदस्त म्यूजिकल थ्रिलर है जो पुनर्जन्म अते बदले दे बैकग्राउंड ते बनी हुई है। इसने बॉलीवुड विच सस्पेंस अते म्यूजिक ते कंबीनेशन नूं फिर तो प्रभाषित किया। ऋषि कपूर ने एक रॉक स्टार मोंटी का रोल निभाया जो अपनी मौत अते अपनी पिछली जिंदगी दे कातिल नाल अपनी मां दी बेइज्जती दा बदला लैंदा है। हैरानी दी गल इह है कि जदे फिल्म 1980 विच थिएटर ते आई ना तां इह बॉक्स ऑफिस ते पूरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई। उस समय रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी दे आसपास दी हाइप दा सामना करना पिया जिस नाल फ्लॉप घोषित कर दिता गया। पर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल अते ऋषि कपूर दे मशहूर गाने ओम शांति ओम द म्यूजिक समय दे नाल इन्ना अमर हो गया कि इस फिल्म नू बॉलीवुड दे इतिहास विच सब तो वधिया थ्रिलर फिल्मां दी जगह मिल गई। आने वाले सालां विच इस फॉर्मूले ते कई ब्लॉकबस्टर फिल्मां बणियां।

0: हाँ जी जी आनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसाने वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आज से बने हुए। अगली जड़ी फिल्म है कि इस लिस्ट में चूज द नाम है जी दूसरा आदमी 1977 यानी कि 1977 द विच आई सी यश राज बैनर दे थले रमेश तलवार दे डायरेक्शन विच बनी दूसरा आदमी रिश्तियां दे बारे विच एक बोल्ट कॉम्पलैक्स अते अपने समय तो अगे दी फिल्म सी। ऋषि कपूर राखी गुलजार अते नीतू सिंह दे लीड रोल वाली ये फिल्म एक वड्डी उम्र दी औरत राखी दे इर्द गिर्द घूमदी है जो अपने गुजरे हुए लवर दी इमेज एक बहुत छोटे आदमी ऋषि कपूर विच देखती है जिस नाल दोनों दे विचकार एक अजीब इमोशनल टकराव शुरू हो जाता है। 1970 दे दहाके दे ट्रेडिशनल अते कंजरवेटिव इंडियन सोसाइटी नूं अजिहे अलग अते कॉम्पलैक्स इंसानी रिश्तियां नूं अपनाउणा मुश्किल लगता सी जिस दे चलदे बॉक्स ऑफिस ते इस नूं ठंडा रिस्पांस मिलिया अते ए फ्लॉप हो गई। पर अज दे जमाने विच जद लोक मॉडर्न रिश्ते अते साइकोलॉजिकल टकरावां ते आधारित सिनेमा पसंद करदे ने तां ऋषि कपूर दी जबरदस्त परफॉर्मेंस अते फिल्म दी दिलचस्प स्क्रिप्ट नूं एक क्लासिक मन्निया जांदा है।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहनगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.01 ते जी अच्छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच आंदा है जमाने को दिखाना है। नासिर हुसैन दे डायरेक्शन विच बनी जमाने को दिखाना है एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है की है जिस विच ऋषि कपूर दे नाल पद्मिनी कोल्हापुरी सी। नासिर हुसैन अते ऋषि कपूर ने पहले ब्लॉकबस्टर हम किसी से कम नहीं सी ए दिती सी, इसलिए इस फिल्म तो भी बहुत उम्मीद सी। फिल्म दा म्यूजिक आई जी बर्मन ने बनाया सी अते खासकर ऋषि कपूर दा गाना दिल लेना खेल है दिलदार का जो पहाड़ा विच शूट किया गया सी एक कल्ट चार्ट बस्टर बनया हुआ है। रिलीज होने ते दर्शकों नूं कहानी थोड़ी पुरानी अते किसी पिटी लगी जिसदे कारण फिल्म थिएटर विच रिलीज हुई अते बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद विच साल बाद ना ऋषि कपूर दी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स उन्हां दी कॉमिक टाइमिंग अते बेहतरीन गाणिआं ने फिल्म नूं यूथ ऑडियंस वल्लों वार वार देखण ते मजबूर कर दिता अते अज वी ए टीवी ते सब तो पॉपुलर हल्के फुल्के फिल्मां दे विचों एक है।

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

जी आनू जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी 101 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनास बने हुए। अगला नाम है जी राही बदल गए थे। फिल्म रिलीज हुई सी 1985 दे विच। रवि टंडन दे डायरेक्शन विच बनी राही बदल गए ऋषि कपूर दे करियर दा एक होर छिपिया होया हीरा है जिसनू रिलीज होने ते पहचान नहीं मिली जिसके बाद हकदार सीगे उदो। इस फिल्म विच ऋषि कपूर ने शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरी वर्गे जानिया मानिया एक्ट्रेसिस दे नाल डबल रोल किया। फिल्म की कहानी गलत फहमिया प्यार और परिवारिक भावनावां विच फसे किरदारा दे इर्द गिर्द खूबसूरती नाल बुनी हुई है। आरजी बर्मन का म्यूजिक इसकी सब तो वड्डी USP सी। 1980 दे दहाके दे विचकार जद स्क्रीन ते एक्शन ते बेरहम विलन आम गल सी इस शांत ते प्यारी लव स्टोरी नू थिएटर ते आम दर्शकां ने नकार दिता ते फिल्म बॉक्स ऑफिस ते पिछे रह गई। हालांकि अज दे समय विच जद लोग सिर्फ परिवारिक थीम ते मधुर म्यूजिक वालियां फिल्मां लभदे हैगे ने तां यूट्यूब ते OTT प्लेटफॉर्म ते फिल्म दे व्यूज ते तारीफ साबित करती है कि इसने दर्शकां दे नाल गहराई नाल जुड़ा महसूस किया है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
6: They see friendly. Hey, yo, Sean.

the house. हां जी, ते सी ऋषि कपूर दी दी बेस्ट फिल्मां जो पहला पसंद नहीं आईयां पर बाद विच बहुत ज्यादा पसंद आईयां, है ना। तो तुसी दसो कि थानू इन्हां दे विचों केड़ी सब तो ज्यादा पसंद है। फटाफट दे नाल छोड़ो रेडियो बिस्वानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है, जिहदे बिस्वानी @biswani.com साडी ईमेल आई टी है। जरिया जिहड़ा भी अपनाउणा चाहुंदे हैगे हो तुसी अपनाओ, साडा गल्ला पता जरूर करो, फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां हमेशा दी तरह यही वादा करना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, कल करदे मुलाकात। सत श्री अकाल।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन. au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निःशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au। कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: मनसा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती। अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा?
1: पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी।
2: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा फील कर रहे हो आप? क्योंकि अच्छा फील कराने, एंटरटेन करने और आपको एकदम वाइब में ले जाने हम आ गए हैं। क्योंकि हमारे तो प्रोग्राम का नाम ही इवनिंग वाइब है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। सो सबसे पहले तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है, प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास सेगमेंट के साथ। वो सेगमेंट है क्या? वेल ऑफ कोर्स इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सेगमेंट, बट इट्स अ रिचुअल, हेल्दी रिचुअल जो हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये रिचुअल जो है वो डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सबसे पहले और स्टार्टिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी आप किसी चीज की शुरुआत स्टार्टिंग में ही करते हो ना, तो यू फील गुड। और डीप ब्रेथ एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज जब आप करते हो, लंबी गहरी सांसें जब आप लेते हो, तो आप किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो बिना किसी केओस के कर सकते हो। मतलब आपके मन में शांति होगी, आप प्रोडक्टिव होगे और साथ में एकदम शांत मन से आप अपने सारे फैसले ले पाओगे, जो कि बहुत ही जरूरी होता है व्हेन एवर वी वांट टू मेक अ डिसीजन। सो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते प्रोग्राम की शुरुआत होगी अब एक बहुत ही बढ़िया से गाने के साथ। और गाने का नाम है वो पहली बार। अब एग्जैक्टली ये वो पहली बार कौन सा है, आइए सुनते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा।

कुछ गाने आपको एकदम कॉन्सर्ट वाली फीलिंग दे देते हैं, एंड आई थिंक दिस सॉन्ग इज ऑल्सो लाइक दैट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. और यहाँ पर अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की तरफ, रुक करते हैं. मौसम क्या कह रहा है, टेम्परेचर क्या कह रहा है. वेल मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 24.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको हो रहा है 20.9 डिग्री सेल्सियस के करीब. जी हाँ, इसी के साथ नो चांसेस ऑफ बारिश, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था आपको, एकदम मजेदार सी धूप आपको मिलने वाली है और वो आपको मिली भी. जी हाँ, रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे. और अगर एयर क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो एयर क्वालिटी है एकदम फेयर. जी हाँ, आज वेडनेसडे का मौसम जैसा रहा, थर्सडे का भी वैसा रहेगा. ऑल दो टेम्परेचर में गिरावट आप देख पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी बारिश होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एंड वेन आई से थोड़ी सी 30% चांसेस बारिश होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं विद 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर. और ये है थर्सडे के मौसम का हाल. वहीं अगर फ्राइडे की बात की जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है विद 20% चांसेस ऑफ बारिश. और अगेन मुझे सूरज जो है वो अच्छा खिलखिलाता हुआ, चमचमाता हुआ नजर आ रहा है. मतलब अगले 2 से 3 दिन आपको सूरज और सनलाइट और विटामिन डी के फ्रंट पे कोई भी परेशानी नहीं होगी. सो या मजा लीजिए इस जबरदस्त मौसम का. और इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत.

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th of August 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं। तो उमसॉक से

0: कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
0: अरे ओम सॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
0: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
0: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर श्रेनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, मौसम की बात भी हो चुकी है। अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए तो बात बन जाए, क्योंकि आपकी फरमाइशें उतनी ही जरूरी है हमारे लिए जितनी की ऑक्सीजन। जी हाँ, आप लोग बोलोगे क्या बात है निविया, मतलब शेर व शायरी नहीं हो पा रही है तो कहीं से साइंस घुसा दी है यहाँ पे। जी हाँ, आपको पता है फीलिंग्स इंपॉर्टेंट और वो आप तक पहुंच गई है। सो आइए, सबसे पहले तो अगर आप कोई पसंदीदा गाना जो आपको बहुत पसंद है फरमाइश करना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप कर सकते हैं, बिकॉज आर प्रोग्राम इज नॉट वन वे ट्रैफिक और एक तरफ से ही नहीं जाती है यहाँ पे गाड़ी, दूसरी तरफ से आती, मतलब आप भी अपने गाने जो हैं वो फरमाइश कर सकते हो, किसी को डेडिकेट कर सकते हो, उन्हें स्पेशल फील करवा सकते हो। सो व्हाट यू गोना डू इज आप अपना फोन उठाने वाले हो, नंबर डायल करने वाले हो, नंबर है +91 8288 7701। आई रिपीट +91 8288 7701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

बदल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

जी हाँ दोस्तों, तो आज जाने की जिद तो बिल्कुल मत कीजिए और यहाँ पर हमारी बात की तरफ, जो हम आपको बताने वाले हैं, उसकी तरफ गौर कीजिए। जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो जीना चाहिए। आई नो देयर आर थिंग्स जो कि हमें फन लग सकती हैं, लेकिन वो इतनी फन नहीं है, वो हमारी हेल्थ को डैमेज करती हैं। और फॉर जनरेशंस हमारे लोग उन चीज़ों को कंज्यूम करते आए हैं, ऑल द बैड थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट लिकर, एल्कोहल, या आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि कैसे ये, हाँ, हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा फील करवा सकते हैं कि हमें हमारी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया, पर वो परेशानियां अगर हमारी जिंदगी में हैं तो वो बनी रहेंगी, क्योंकि बूज वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए फील करवा सकती है बट उनको खत्म नहीं कर सकती है। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट लिकर, बिकॉज जेंजी, यानी कि जो जनरेशन है ये वाली जेंजी लोगों की, इन्होंने कह दिया है कि वो लोग तो इससे दूर रहने वाले हैं। जी हाँ, और ये कितनी बड़ी बात है, इसलिए मैं बात करना चाहती थी इस बारे में। जी हाँ, सो जेंजी जो है उन लोगों ने डिच कर दिया है अल्कोहल को। जी हाँ, वो डिच कर रहे हैं अल्कोहल को, और रिकॉर्ड लो चला गया है यूरोप, यूएस और बहुत सारी कंट्रीज में लिकर की सेल्स। जी हाँ, मतलब आज से पहले जनरेशन तक किसी चीज की सेल्स में कमी आ सकती थी, लेकिन लिकर की सेल्स में कभी भी कमी नहीं आती थी, लेकिन जेंजी लोगों ने बता दिया है कि नो, लिकर इज नॉट फॉर देम, मतलब लिकर इज नॉट अ गुड थिंग। वो बाकी और सारी चीजों को, अच्छी हेल्दी चीजों को, स्वाद एंड टेस्टी चीजों को खाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। एंड दे आर लाइक, यू नो व्हाट, जो भी चीज हमारे हेल्थ को खराब कर रही है और वो इतनी टेस्टी भी नहीं है, व्हाई वुड आई कंज्यूम इट, व्हाई शुड बी कंज्यूम इट, एंड दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो इवन जेंजी लोगों को ये सच जो है वो समझ आ गया है, जो कि मिलेनियल्स को नहीं आया, मिलेनियल से पहले वाली जनरेशन को नहीं आया, लेकिन जेंजीज को आ गया। हम हमेशा बात करते हैं कि जेंजीज कितने अलूफ है, मतलब उनको, मतलब कुछ भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मजे करने हैं, उनको सब कुछ एकदम परोसा हुआ मिल गया है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, उनको जीने का जो असली मतलब है वो ही पता नहीं है। मतलब वो एकदम मजेदार सी जिंदगी जो है वो जी रहे हैं, मतलब बिना किसी टेंशन के। टेंशन होती भी है तो भी उनको फील नहीं करना चाहते, लेकिन जेंजी एटलीस्ट यहाँ पर एक समझदारी तो कर रहे हैं, और वो है कि उन्होंने से नो टू लिकर, यानी कि अल्कोहल कह दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज जो है ना तो टेस्टी है और ना ही ज्यादा मजेदार है, मतलब क्या ही रोल है, इससे अच्छा हम कुछ और करें। या तो जेंजी लोगों, आपको मेरी तरफ से बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, और मैं इतना ही कहूंगी कि आपने वो मैट्रिक्स जो है वो क्रैक कर लिया है जो बहुत सारी जनरेशंस नहीं कर पाई थी। और मैं अभी भी बोलूंगी कि लिकर्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लिकर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो ट्राई नॉट टू कंज्यूम इट। या मेरे लिसनर्स एंड सभी को मैं यही कहूंगी कि अल्कोहल इज बैड, लिटरली। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you're listening to Radio Biswani.
9: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
10: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
11: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
12: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
11: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
12: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
11: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
12: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
13: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
14: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
15: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, बेसिकली एक ऐसी चीज जिसके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। बात हो रही है पैसा पैसा पैसा यानी कि करेंसी की। और इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आप सबसे पहले तो आप इमेजिन कीजिए कि देयर इज अ वर्ल्ड जहां पर आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, मतलब आपके पास सारी की सारी चीजें हैं, आपको जरूरत ही नहीं है पैसा खर्चने की, पैसे की, और करेंसी जो है उस वर्ल्ड में कोई चीज ही नहीं है। जी हाँ, क्या आप ऐसा कोई वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हैं? यू विल बी लाइक ओ वाओ, मतलब सबके सब अमीर, कोई गरीब नहीं, कुछ ऐसा होने वाला है क्या? मतलब ऐसी चीज को इमेजिन करने के लिए कह रही हो क्या? नहीं, वेल अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, बट क्या ये इतना ईजी है? वेल इसी के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि एलन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान, अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू उन्होंने दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 2036 तक, मतलब एक डेकेड लेटर, मतलब 10 साल बाद, मनी वोंट मैटर एनीमोर। जी हाँ, उन्होंने कहा है। आप लोग बोलोगे हैं, एलन मस्क ने कहा है तो कहीं ना कहीं सच हो सकता है, बिकॉज ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ। बट व्हाई इज ही गेटिंग रिच इफ मनी वोंट मैटर इन 2036? वेल या दैट इज द क्वेश्चन, कि बंदा रिच हो क्यों रहा है? ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा अमीर इंसान ये कह रहा है कि पैसे की जो है वो कीमत ही नहीं बचेगी 2036 तक। मतलब लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज होंगे, इतना सारा खाना होगा कि उनको पैसे की जरूरत नहीं होगी, पैसा खर्चने की जरूरत नहीं होगी। और ये उन्होंने इसलिए कहा है कि वो तब तक एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हैं जहां पर रोबोट्स और एआई, इतने सारे रिसोर्सेज, इतना सारा खाना और इतनी सारी चीजें जो कि हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए चाहिए होती हैं, वो इतनी सारी तादाद में हो जाएंगी, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगी कि हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो खर्चने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सो ये वाली चीज जो है वो एलन मस्क ने कहा है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या ये बंदा क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वेल, इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे हैं। अब इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एलन मस्क जो कह रहे हैं वो हो जाएगा, मतलब ठीक है, रोबोट्स और एआई जो है वो अपनी स्मार्टनेस से बहुत सारा खाना, बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट कर देंगे और ह्यूमंस को जो है वो एकदम मजेदार जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। बट देयर आर सम रिसोर्सेज जो कि फिर भी लिमिटेड होंगे, और करेंसी इसलिए बनाई जाती है और इसलिए बनाई गई है ताकि एलोकेट किया जा सके लिमिटेड रिसोर्सेज को। जी हाँ, ताकि हर कोई उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट ना कर दे, इसीलिए मनी को और करेंसी को बनाया गया था। अगर हर किसी के पास पैसा होगा और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो फिर क्या वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो भी बढ़ जाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर मनी की वैल्यू खत्म होती भी है, अगर AI और रोबोट्स कितने भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं, देन इवन देन देयर विल बी सम रिसोर्सेज जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो कम क्वांटिटी में होंगे, और ऐसे में उनका एलोकेशन कैसे होगा? वेल, बिना पैसे के तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। सो अगर ट्रंप ये कह रहे हैं, मस्क ये कह रहे हैं कि यहां पर अगर 2036 तक हमारा AI और रोबोट अच्छे से काम करना शुरू कर देता है तो हमें जरूरत नहीं होगी पैसे की और इसकी वर्थ जो है वो मचेगी नहीं, बट हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा ही है तो आपने अपना एक पेमेंट सिस्टम क्यों बना दिया, एक पेमेंट ऐप, एक्स की एक पेमेंट ऐप भी उन्होंने मार्केट में निकाल दी है। मतलब एक बंदा जो कह रहा है कि पैसे की वैल्यू नहीं बचेगी 10 साल में, उसने इसी के अराउंड एक ऐप भी बना दी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कि 2036 तक तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको पैसे इधर से उधर भेजने हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लो। व्हाट अ हिपोक्रेसी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सच में ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ पे पैसे की जरूरत ना हो? कीजिए और फिर मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। यहाँ पर एक और गाना, आप जरा इस खूबसूरत से गाने को सुनिए।

जी दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया चलाते चलाते एक मीम मेरी आंखों के सामने आता है और उसमें कुछ लिखा होता है जो कि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स सेंस बना रहा था और मुझे लगा कि सेंस बन रही है बट फिर भी सेंस नहीं बन रही है, तो मैं अपने लिसनर्स पर छोड़ देती हूँ कि उनको क्या लगता है, क्या इसमें सही कहा जा रहा है या गलत कहा जा रहा है या कुछ बीच का कहा जा रहा है, मतलब सही भी नहीं है गलत भी नहीं है, कुछ मिक्स सा है। जी हाँ, आप डिसाइड करेंगे। सो मीम में लिखा हुआ था कि दे से दैट स्वीट्स वॉन्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस में आकर और जब भी वो टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उनको मीठा खाने की आदत होती है। यू नो, ये बहुत सारे लोगों में है, बहुत कम लोगों में नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा लोगों में है। सो ऐसे में बहुत सारे लोग उनको ये कहते हैं जब भी वो मीठा खाते हैं स्ट्रेस में कि दे से दैट स्वीट वॉन्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज इफ ब्रोकली विल, एटलीस्ट केक ट्राइज। जी हाँ, नहीं सुना तो ध्यान से सुनिएगा। दे से दैट स्वीट्स वॉन्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज इफ ब्रोकली विल, एटलीस्ट केक ट्राइज। भाई बात तो सही है पर फिर भी नहीं सही है। पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्वीट्स जो है वो सॉल्व नहीं करेंगी प्रॉब्लम, लेकिन ब्रोकली भी कहाँ ही करेगी वो प्रॉब्लम को सॉल्व, तो क्या मतलब एटलीस्ट केक ट्राई तो करता है। सो या यू टेल मी अबाउट योर थॉट्स, क्या लगता है आपको जो कहा गया है वो सही है या नहीं है, या फिर सही भी है गलत भी है, जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन

0: 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बर्थडे विश कर लेते हैं हमारे फेवरेट एक्टर्स में से एक, हमारे अपने संजू बाबा को। जी हाँ, संजय दत्त का जन्मदिन है आज, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाबा आप अपनी मजेदार सी मूवियां हमें दिखाते रहिए, लाते रहिए, क्योंकि आपके फैंस और हम सब आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो संजू बाबा की बहुत सारी मूवीज हैं, और मैं फिर भी कहूंगी कि मुन्ना भाई MBBS जो है वो मेरी फेवरेट है। आप मुझे बताइए संजू बाबा की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, लेकिन सबसे पहले इनको जन्मदिन की मुबारकबाद तो दे ली जाए। जी हाँ, सो संजू बाबा आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम इतना ही कहेंगे कि ये साल आपके लिए और भी कामयाबी भरा रहे, हेल्थ और वेल्थ जो है वो आती रहे, मतलब बिजनेस फ्रंट में भी आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है, मूवीज आपकी आ रही है, मतलब कितना सही वक्त है आपके लिए। हाँ, देयर वर टाइम्स जब आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे थे, लेकिन अब सब एकदम मजेदार है, और हम यही दुआ करेंगे कि आपकी जिंदगी में आगे भी सब कुछ एकदम कुशल मंगल रहे, आप हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, और एकदम खिलखिलाते रहे। जी हाँ, और मजेदार सी पिक्चर्स अपने फैंस के लिए लेकर आते रहे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट। इसी के साथ संजू बाबा का जन्मदिन है आज, तो ऑफकोर्स उनकी मूवी का एक गाना तो आपके लिए प्ले करना पड़ेगा, और आई थिंक इस गाने से अच्छा कोई भी गाना नहीं हो सकता। मतलब बहुत सारे गाने संजू बाबा के, बट दिस सॉन्ग इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, सो आई गेस दिस इज द सॉन्ग वी आर गोना प्ले फॉर संजू बाबा, क्योंकि उनका है जन्मदिन, एंड ये रहा गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है, वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, लीडर्स क्या कर रहे हैं, आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जापान से, जहां से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आई है और वहां पर भूकंप आया है। जी हाँ, वहां पर भूकंप आया है। जापान में भूकंप से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है और मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए तेज भूकंप में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री सनाए तकाईशी ने कहा कि राहत और बचाव दल समय के साथ होड़ कर रहे हैं। ये भूकंप मंगलवार को स्थानीय समयानुसार, जी हाँ, 4:27 क्यूशू द्वीप के अंदरूनी हिस्से में आया था। अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई थी, बट कुछ लोगों का कहना है कि ये 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का भूकंप था। भूकंप के कारण कुमामोतो शहर के एक शॉपिंग मॉल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मॉल की दूसरी मंजिल गिर गई। जापान के अधिकारियों ने बताया कि मॉल में कई लोग लापता हैं, जबकि और एक फैक्ट्री की चिमनी गिरने से कई लोग घायल हैं। कुमामोतो प्रांत प्रशासन के अनुसार 9,872 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगभग 36,700 घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है। बुधवार सुबह स्थिति की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री तकाईशी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आपातकालीन सेवाओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, अब भी कई लोग बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं, ये समय 7 होड़ का है। प्रशासन ने लोगों से प्रभावित इलाकों से दूर रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में लगातार अभियान चला रहा है। और जापान के लिए कोई नई बात नहीं है, जापान हमेशा इससे गुजरता आया है। उन्हें पता है कि भूकंप आएगा, वो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, पर फिर भी भूकंप जो है वो बाजी मार जाता है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और यहाँ पर यूक्रेन में कार्गो जहाज पर हमले में दो भारतीय नाविक सुरक्षित, दूतावास ने कहा है। जी हाँ, यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने कार्गो जहाज एमवी एजियन रागनर पर हुए हमले को लेकर बयान जारी किया है। दूतावास ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि एमवी एजियन रागनर से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये जहाज कल ओडेसा बंदरगाह पर हमले की चपेट में आया था। बयान के अनुसार 25 जुलाई को एमवी एजियन रागनर पर ओडेसा पोर्ट के पास हमला हुआ था। इस पर चार भारतीय नाविक सवार थे। ब्लैक सी में स्थित ये यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है और 2022 से शुरू हुई रूस के साथ जंग में ये कई बार निशाने पर आ चुका है। दूतावास ने बताया है कि जहाज पर चार भारतीय नागरिक सवार थे, इनमें से दो के सुरक्षित होने की पुष्टि हो गई है जबकि बाकी दो के बारे में जानकारी का इंतजार है। दूतावास ने यह भी कहा कि खोज और बचाव अभियान जारी है और वह संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। बयान के अनुसार भारतीय नाविकों से जुड़ी स्थिति की जानकारी भी हमारे संज्ञान में आई है और इस हमले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और जहाज पर मौजूद सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सभी पक्षों के साथ लगातार संपर्क में भी हैं।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: डिजिसेल बेटर टुगेदर। Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जैसे खबरों के बारे में बात हो रही है तो सीधा चलते हैं ईरान और अमेरिका के विवाद की तरफ। ईरान ने मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकानों पर अचानक हमला बोला। जी हाँ, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि ईरान ने मध्य पूर्व में उसके ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया और कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमला मंगलवार शाम को हुआ। संभावित निशानों या ठिकानों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके जवाब में अमेरिकी और सऊदी अरब की सेनाओं ने पूर्वी इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की। सचकॉम ने कहा कि ये कार्रवाई पिछले 72 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर हुए 30 ड्रोन हमलों के जवाब में की गई, जिनके पीछे ईरान का समर्थन होने का आरोप है। वहीं तेहरान ने अभी तक इन आरोपों या कथित मिसाइल हमलों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये जवाबी हमले ऐसे समय में हुए जब अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिनों से सीधे हमले नहीं हुए थे और बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के साथ बहुत दोस्ताना बातचीत होने की बात कही थी। ताजा घटनाओं ने दोनों देशों के बीच बनी अस्थायी शांति को फिर से खतरे में डाल दिया है और मध्य पूर्व में तनाव दोबारा बढ़ने की आशंका भी पैदा कर दी है।

जी दोस्तों, वहीं ट्रंप ने चीन पर लगाया है बैन और ये टेक्नोलॉजी को बताया सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। वेल ऑफ कोर्स ट्रंप रोस्टिंग सेशन भी इसी के साथ होने वाला है, सो उसके लिए भी बने रहिए। सो ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को अमेरिका में ह्यूमनॉइड रोबोटों के नए आयात पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश घोषणा कर दिया, मतलब इम्पोर्ट पर उन्होंने बैन लगाने की जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया। प्रशासन ने कहा कि ये रोबोट देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये प्रतिबंध उन्नत रोबोटों पर लागू होगा जिनमें ह्यूमनॉइड और चार पैरों वाले रोबोट शामिल हैं। इनमें से कई रोबोट चीन में बनाए जाते हैं। चीन और अमेरिका इस समय रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़त हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में है और अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने पावर इन्वर्टर के आयात पर भी रोक लगा दी है। इन्वर्टर का इस्तेमाल डेटा सेंटर और सोलर पैनलों में होता है। FCC का कहना है कि ये उपकरण अमेरिकी अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। FCC के अध्यक्ष ब्रैंडन कार ने कहा कि एजेंसी अमेरिका की महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि क्या इंसान है ये, मतलब कभी तो ये बहुत ज्यादा फैन बन जाता है शी जिनपिंग का और कभी जो है ऐसी हरकतें शुरू कर देता है। वेल ऑफकोर्स अगर मैं कहूं तो ये वाला तो उनका डिसीजन जो है वो सही है क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी कैन बी अ ग्रेट थ्रेट। जी हाँ, क्योंकि चाइना को ना एक बहुत ही अच्छी चीज करना पसंद है और वो है लोगों पर नजर बनाए रखना। जी हाँ, दूसरी कंट्री के लोगों पर नजर बनाए रखना, अपनी कंट्री पर तो वो कर ही रहे हैं क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है नहीं और वहां पर वो कर सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन उनका मकसद ये है कि दूसरी कंट्रीज पर भी वो ये कर सके। एंड दैट इज द रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो CCTV कैमरास चाइना में बनते हैं या चाइनीज कंपनीज के हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसीज है उनको हमारे साथ शेयर कीजिए, अदरवाइज आपको यहां पर सामान बेचना नहीं मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन कि चाइना को बहुत सारी चीजें जो है वो बुरी लग रही है। चलिए अब ट्रंप रोस्टिंग सेशन की तरफ जाते हैं जरा। अब आपको तो पता ही है ट्रंप जो है वो बहुत सारी खतरनाक चीजें करते हैं। कल ही की बात है उन्होंने AI इमेज स्प्री पर वो चले गए जहां पर वो लिटरली अपने फाइटर जेट पर B2 बॉम्बर पर बैठे हुए हैं और वो ईरान को बॉम्ब कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं और आज ईरान उन्हें बॉम्ब कर रहा है हर जगह से। अच्छा, ये सब करते करते उन्होंने ये भी कहा कि ना बहुत बहुत दोस्ताना बात हमारी ईरान से हो रही है और सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन फिर से जो है वो ठीक कुछ नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ वो जो भेड़ बकरियां होती है ना उसकी तरह लड़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन उसका खामियाजा बाकी सारे लोगों को जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब एक और वीडियो जो है वो ट्रंप की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर वो इंसान कभी भी सीरियस नहीं हो सकता, मतलब सीरियस तो वो होता है पर वैसे वाला सीरियस नहीं होता। अब लिंडसे ग्राहम का जो है वो फ्यूनरल चल रहा था, आपको पता ही है बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन जो है और एडवाइजर जो है वो रहे हैं वो व्हाइट हाउस में, और उन्हीं की देन है ये टैरिफ जो है जितनी भी कंट्रीज पर लग रहे हैं, मतलब उन्हीं का मानना है कि सब पे टैरिफ लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। अब इंसान तो चला गया लेकिन टैरिफ जा नहीं रहे हैं। अच्छा, उसी के फ्यूनरल पे ट्रंप बैठे हैं और ट्रंप को लगती है भूख, उनको लगता है मेरी शुगर ना थोड़ी लो हो रही है, मैं थोड़ी सी टिकटैक खा लेता हूँ। जी हाँ, मतलब बंदा फ्यूनरल में बैठा हुआ, वहां पे पूरा एकदम सीरियस माहौल है और वहां से एकदम से बैठा बैठा आधी नींद में वो जो उनका है वो बनाकर अपनी जेब से निकालता है टिकटैक और पहले JD वैंस को ऑफर करता है, तुम खाओगे? JD वैंस बोलते हैं नहीं, मतलब ऑफ कोर्स JD वैंस क्या बोलते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ वो क्या बोलते हैं। नहीं नहीं सर, मुझे लगता है हमें यहाँ पे नहीं खाना चाहिए और हम यहाँ पे फ्यूनरल में आए हैं, डोंट यू थिंक हमें यहाँ पे खाना नहीं चाहिए? तो ट्रंप कहते हैं अच्छा नहीं खाना तुमको, ठीक है चलो मैं खुद ही खा लेता हूँ। खुद ही अपनी टिकटैक खोलते हैं, खाते हैं और फिर वेंस के बाजू में एक और इंसान बैठा है उसको भी पास ऑन करते हैं। मतलब बंदा कभी सीरियस हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया को ICU में पहुंचा दिया और उसके बाद जो है खुद जो है वो किसी के फ्यूनरल में बैठ के टिकटैक खा रहा है। आप लोग बोलोगे कि टिकटैक के शेयर्स ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ट्रंप जो है वो ऊपर जा नहीं रहे हैं। एंड जिन लोगों को समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ, वो महान है, वो इंटेलिजेंट है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इस दुनिया में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और कंट्रीज ये कोशिश करने में लगी हुई हैं कि वो इस पॉल्यूशन को कम कर सके, वो नेचर को बचा सके, लेकिन ये नेचर बचने का नाम नहीं ले रहा और ये पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, और जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके हमें आ सकती हैं। बट या हु केयर्स, बिकॉज We don't care, so nature also doesn't care. जी हाँ, so यहाँ पर situation ये है कि July 23 को officially सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा busiest air travel day मान लिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। So July 23 was the busiest air travel day ever with 153,359 flights tracked worldwide. जी आपने सही सुना, मतलब 153,359 flights जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रैक की गई है। इमेजिन बिजिएस्ट वर्ल्ड जो है वो एयर ट्रैवल डे। आई मीन मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। मतलब यहाँ हम नीचे जो है वो ट्रैफिक्स बढ़ा रहे हैं, अब हमने आसमान पे भी ट्रैफिक जो है वो इतना बढ़ा दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े टाइम में तो लिटरली आसमान में भी पांव रखने की जगह नहीं बचेगी। बट इट इज व्हाट इट इज, आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग, एटलीस्ट अ पॉपुलेशन कंट्रोल। या बट आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हैपन, बट या बिजिएस्ट एयर ट्रैवल डे टिल डेट। इमेजिन 153,359 imagine flights, इतनी सारी flights आसमान पे। I can't even imagine। एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, वक्त हो गया है उसी सेगमेंट का जो हमारे दिल के बेहद करीब है, मतलब पुराने गाने, पुरानी बातें और वो बहुत सारे किस्से जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ उन्हीं उन्हीं पुरानी एरा के। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से सबसे पहले गाने से शुरुआत करते हैं जो कि बेहद खूबसूरत होने वाला है, और खूबसूरत से ज्यादा मैं कहूंगी ये बड़े पते की बात होने वाली है, क्योंकि गाने का नाम है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। एंड दैट्स व्हाट पीपल डू एक्चुअली। ह्यूमंस आर नोन फॉर दिस बिहेवियर कि कहीं पे निगाहें होती हैं और निशाना कहीं और पे लगा रहे होते हैं। सो यही गाना है आपके लिए। CID मूवी का सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि फरमाइशी गीत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही जबरदस्त सा और अजीबोगरीब किस्सा। जी हाँ, तो किशोरदा अपनी मस्ती के लिए हमेशा से जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि किशोरदा के साथ जिसको भी काम करने का मौका मिला है, वो इतने मजेदार तरीके से उस वक्त को एंजॉय करते थे जब वो किशोरदा के साथ काम करते थे कि वो इसकी मिसाल आज भी देते हैं। जी हाँ, उनके साथ ड्यूएट करने वाले सिंगर्स हो, उनके साथ काम करने वाले म्यूजिशियंस हो, या कोई भी हो, सब के सब वहां पर एंजॉय करते थे। इनफैक्ट जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के टाइम स्टूडियो में जितने भी लोग मौजूद होते थे, वो भी इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। तो किस्सा कुछ ऐसे शुरू होता है कि इंदीवर, जी हाँ, महान लिरिसिस्ट इंदीवर जो है, एक बहुत ही भावुक कर देने वाला, मतलब सैड सा गाना जो है वो लिखते हैं, और इसकी कमान जो है वो मिलती है कल्याण जी और आनंद जी को। जी हाँ, वो संगीतकार होते हैं इस गाने के, और वो इसके लिए एक बहुत ही सैड वाली धुन भी बना देते हैं। अब ये गाना जो है वो किशोरदा को रिकॉर्ड करना था, तो किशोरदा जो है इस गाने को पढ़ते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि गाना तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कोई मुझे खादी टोपी ला के देगा तो बात बन जाएगी, क्योंकि जब तक मुझे खादी टोपी नहीं मिलेगी मैं इस गाने को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब कल्याण जी, आनंद जी और इंदीवर एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमने इतना सैड गाना बना दिया है और ये इंसान सैड तो दूर, इसको मस्ती सूझ रही है। जी हाँ, अब जब उन्होंने पूछा कि किशोरदा, हमने इतना भावुक कर देने वाला गाना बनाया है, लिखा है, धुन बनाई है, आप इसे भावुक तरीके से नहीं गा रहे, मतलब आपको यहाँ पे मस्ती सूझ रही है, क्या मान रहे? तो किशोरदा सामने से बड़ी ही दिलचस्प बात कहते हैं। किशोरदा कहते हैं कि अगर मैं इस गाने को गाते गाते खुद ही भावुक हो जाऊंगा तो मैं इस गाने को अच्छे से गा नहीं पाऊंगा। जी हाँ, और इसीलिए जब भी मुझे कोई भी भावुक यानी कि सैड गाना गाना होता है तो मैं उसे मस्ती वाले भाव से गाता हूँ, मतलब मुझे मस्ती फील करनी है अपने अंदर, तभी मैं उस सैड गाने को गा पाऊंगा, ताकि मैं लोगों को सैड कर पाऊं, खुद ही सैड हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और वहीं अगर मुझे कोई मस्ती वाला गाना गाता होता है तो मैं एकदम जो है वो सीरियस हो जाता हूँ खुद, ताकि मैं अच्छे से उसे गा सकूं। जी हाँ, मतलब ऑपोजिशन वाला जो है यहाँ पे पूरा लोचा था, मतलब ऑपोजिट करते थे वो। सैड गाने गाने के लिए पहले मस्ती कर लेते थे और मस्ती वाले गाने के लिए पहले सीरियस हो जाते थे कि नहीं नहीं अभी तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तो ये तो किशोरदा, और यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं, फरमाइशी गीत, ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिस्नर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। गाने की फरमाइश एक्चुअली हमें पिछले कल ही मिल गई थी आज के लिए, और हमने कह दिया था कि ठीक है, इस गाने को एकदम मतलब सही से टाइम पे हम प्ले करेंगे। सो थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने हमेशा हमारे प्रोग्राम में फरमाइश करने के लिए, रेकमेंड करने के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और जो गाना उन्होंने किया है फरमाइश, वो है जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया। जी हाँ, मतलब गाना तो जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, ये रहा आपका खूबसूरत सा गाना।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन क्लॉक लॉन्च। ब्रिस्बेन के क्वीन स्ट्रीट मॉल में 2032 ओलंपिक खेलों का 6 साल का ऑफिशियल काउंटडाउन क्लॉक शुरू कर दिया गया है। लॉन्च इवेंट के दौरान मेयर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शहर के लोकप्रिय इबिस पक्षी को भी ओलंपिक का शुभंकर बनाया जा सकता है। वहीं ब्रिस्बेन का फैशन ब्रांड ब्लैक मिल्क का बड़ा फैसला। जी हां, ब्रिस्बेन का मशहूर क्लॉदिंग ब्रांड ब्लैक मिल्क अब अपनी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बंद कर रहा है। बढ़ते खर्चों के कारण कंपनी अब अपने कपड़ों का उत्पादन विदेश में करेगी। हालांकि इसके डिजाइन का काम ब्रिस्बेन स्टूडियो से ही चलेगा। वहीं मॉर्टन आइलैंड पर बर्ड फ्लू का संदिग्ध मामला। ब्रिस्बेन के पास मॉर्टन आइलैंड पर एक मृत समुद्री पक्षी में H5 बर्ड फ्लू की पुष्टि का संदिग्ध मामला सामने आया है। हालांकि क्वींसलैंड स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्मर्स सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं ग्रेट बैरियर रीफ पर यूनेस्को की रिपोर्ट। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में सूची में डालने से रोक दिया है। हालांकि उन्होंने क्वींसलैंड सरकार के को जंगलों की कटाई रोकने और पानी की गुणवत्ता सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं पीक डाउन्स माइन में दुखद हादसा। क्वींसलैंड की पीक डाउन्स माइन में आज सुबह वाहन दुर्घटना में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। माइनिंग कंपनी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ओरिजिन एनर्जी ग्राहकों के लिए डेटा अलर्ट। क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े ऊर्जा प्रदाता ओरिजिन एनर्जी ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है कि एक साइबर हमले के दौरान कुछ बैंक डाटा प्रभावित हुआ है। कंपनी ने ग्राहकों को पासवर्ड बदलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बड़ी बातचीत। नीट और एग्जाम लीक मुद्दे को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में आज बड़ा अपडेट आया है। सरकार और छात्र नेताओं के बीच आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अहम बैठक बुलाई गई है। वहीं अमेरिका का भारतीय सामानों पर नया टैरिफ। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 10% का नया आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने ट्रेड नियमों का हवाला दिया है। हालांकि भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं DRDO की मिसाइल कुशा का सफल टेस्ट। भारत की रक्षा प्रणाली को आज एक बड़ी ताकत मिली है। रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने अपनी नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुशा का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ऐसे के साथ गंगा किनारे से अतिक्रमण हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि पटना में गंगा नदी के किनारों पर बने सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 6 हफ्ते के भीतर पूरी तरह साफ किया जा सके। वहीं शिक्षकों के लिए दिल्ली चुनाव आयोग की राहत। दिल्ली चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची और चुनावी सर्वेक्षण से जुड़े सरकारी कामों का असर सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा। मिडल ईस्ट के समुद्री व्यापारिक रास्तों में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य और समुद्री निगरानी ठिकानों पर लगातार 13वें दिन हवाई हमले किए हैं। वहीं शी जिनपिंग करेंगे अमेरिका का दौरा। वॉशिंगटन से बड़ी खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 दिसंबर को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी के साथ विमानन संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी सादिया जहीदी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था में इतिहास रच दिया है। सादिया जहीदी को इस वैश्विक उड्डयन संस्था की पहली महिला प्रमुख चुना गया है। वहीं स्पेन में जंगलों की आग बुझाने का अनोखा तरीका। स्पेन में जंगलों की आग रोकने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया गया है। वहां प्रशासन गधों की मदद से जंगलों की सूखी घास चरवा रहा है ताकि गर्मी के दिनों में झाड़ियों में अचानक लगने वाली आग को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ सलमान रुश्दी ने कोर्ट में दर्ज करवाई गवाही। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने साल 2022 में न्यूयॉर्क में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में चल रहे ट्रायल के दौरान अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करवाई है। इसी के साथ नेपाली सीमा पर 5 संदिग्ध गिरफ्तार। नेपाल से भारत की सीमा में बिना कागजात अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे 5 लोगों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में एक अमेरिकी नागरिक और एक संदिग्ध अलगाववादी कार्यकर्ता शामिल है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का शानदार आगाज। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान 23वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत हो गई है। वहीं भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। हरारे में खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। वहीं विश्वनाथन आनंद बने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष। भारत के पूर्व विश्व चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की एक्शन से भरपूर शुरुआत। ग्लासगो में आज भारत के पैरा पावर लिफ्टिंग जिम्नास्टिक और स्विमिंग के खिलाड़ी एक्शन में हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में आज भारत के पास पदक जीतने के कई मौके रहेंगे। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
6: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

जाता।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उत्ते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें DigiCellPacific.com।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन ओवर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो बॉलीवुड विच ना अक्सर कहा जाता है कि फिल्मा दो तरह नाल इतिहास बनाउंदियां ने। एक रिलीज तो पहला हफ्ते विच करोड़ रुपए कमांदियां ने ते रिकॉर्ड बुक विच दर्ज हो जांदियां ने ते दूसरा वो जो थिएटर विच भावे ही वधिया परफॉर्मेंस ना करन पर दर्शकां दे ज़हन विच सालां तक जिंदा रहिंदियां ने। ते ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर ने जिन्हां ने पांच दहाकियां तक फिल्म इंडस्ट्री ते राज कीता। ब्लॉकबस्टर बॉबी तो दे लीड रोल दे तौर विच शुरुआत करन वाले ऋषि कपूर ने अपने पूरे करियर विच सिर्फ कमर्शियल फॉर्मूला फिल्मा दे पिछे नहीं भजे। यही वजह है कि उन्हां दा फिल्म ग्राफ विच कई बेहतरीन कहानियां शामिल हैगियां ने जो रिलीज दे समय का बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई हैं पर आज जो फिल्मा हर सिनेमा लवर दी बकेट लिस्ट विच जरूर ने। दस दी उन्हां ही बेस्ट बेस्ट वालियां फिल्मा दे बारे विच पर पहला सुनो एक गीत।

जी दा वेलकम बैक, जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत-बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो द सोनी 101.1 एम ते चार चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए ऋषि कपूर दी दी बेस्ट फिल्म आ जड़ियां थिएटर से फ्लॉप रहीयां पर सदाबहार है कि ने उना दे विच पहला नाम आंदा हैगा जी मेरा नाम जोकर जो 1970 दे विच आई सी। जादुई बॉलीवुड दी सब तो वड्डी ते शानदार फिल्म की गल होगी राजकुमार राज कपूर की इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र हमेशा सब तो पहला किया जाएगा। ऋषि कपूर ने इस फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के नाल नेशनल अवार्ड जीतिया। फिल्म की कहानी एक जोकर की जिंदगी तीन वक् वक् पड़ावां ते उसके अधूरे प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। ऋषि कपूर ने इस विच राज कपूर के बचपन का रोल निभाया। रिलीज होने ते फिल्म इन्नी बुरी तरह के नाल फ्लॉप हुई कि कपूर परिवार कर्ज विच डुब गया क्योंकि दहाकियां दर्शकां नूं ना इसका लंबा रन टाइम अते गहरा इमोशनल कंटेंट पसंद नहीं आया। पर साल बाद जब फिल्म नूं दुबारा

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी वन सर ओवर एम ते जी आर चे संदेश और दिनाल से बने हुए। अगला जिहड़ा नाम है जी वो है बहुत ही शानदार जी मूवी कर्ज, जो 1980 आई सी। सुभाष कई के डायरेक्शन विच बनी कर्ज एक जबरदस्त म्यूजिकल थ्रिलर है जो पुनर्जन्म अते बदले दे बैकग्राउंड ते बनी हुई है। इसने बॉलीवुड विच सस्पेंस अते म्यूजिक ते कंबीनेशन फिर तो प्रभाषित किया। ऋषि कपूर ने एक रॉक स्टार मोंटी का रोल निभाया जो अपनी मौत अते अपनी पिछली जिंदगी दे कातल नाल अपनी मां दी बेइज्जती दा बदला लैंदा। हैरानी दी गल है कि जदे फिल्म 1980 विच थिएटर ते आई ना तां इह बॉक्स ऑफिस ते पूरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई। उसे समय रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी दे आसपास दी हाइप दा सामना करना पिया जिस नाल फ्लॉप घोषित कर दिता गया। पर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल अते ऋषि कपूर दे मशहूर गाने ओम शांति ओम द म्यूजिक समय दे नाल इन्ना अमर हो गया कि इस फिल्म नू बॉलीवुड दी इतिहास विच सब तो वधिया थ्रिलर फिल्मां दी जगह मिल गई। आने वाले सालां विच इस फॉर्मूले ते कई ब्लॉकबस्टर फिल्मां बणियां।

0: जी आयनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी 101 FM ते जी आप चेस संदेश अलग दराब से बने हुए। अगली जड़ी फिल्म है कि इस लिस्ट में चूज द नाम है जी दूसरा आदमी 1977 यानी कि 1977 द विच आई सी यश राज बैनर दे थले रमेश तलवार दे डायरेक्शन विच बनी दूसरा आदमी रिश्तियां दे बारे विच एक बोल्ट कॉम्पलैक्स अते अपने समय तो अगे दी फिल्म सी। ऋषि कपूर राखी गुलजार अते नीतू सिंह दे लीड रोल वाली ये फिल्म एक वड्डी उम्र दी औरत राखी दे इर्द गिर्द घूमदी है जो अपने गुजरे हुए लवर दी इमेज एक बहुत छोटी आदमी ऋषि कपूर विच देखती है जिस नाल दोनों दे विचकार एक अजीब इमोशनल टकरा शुरू हो जाता है। 1970 दे दहाके दे ट्रेडिशनल अते कंजरवेटिव इंडियन सोसाइटी नूं अजिहे अलग अते कॉम्पलैक्स इंसानी रिश्तियां नूं अपनाउणा मुश्किल लगता सी जिस दे चलदे बॉक्स ऑफिस ते इस नूं ठंडा रिस्पांस मिलिया अते ए फ्लॉप हो गई। पर अज दे जमाने विच जद लोक मॉडर्न रिश्ते अते साइकोलॉजिकल टकरावां ते आधारित सिनेमा पसंद करदे ने तां ऋषि कपूर दी जबरदस्त परफॉर्मेंस अते फिल्म दी दिलचस्प स्क्रिप्ट नूं एक क्लासिक मन्निया जांदा है।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज है।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
3: Yaar, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस. और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
3: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आपके संदेश अलग दिन आल से बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच आंदा है जमाने को दिखाना है। नासिर हुसैन दे डायरेक्शन विच बनी जमाने को दिखाना है एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है की है जिस विच ऋषि कपूर दे नाल पद्मिनी कोल्हापुरी सी। नासिर हुसैन अते ऋषि कपूर ने पहले ब्लॉकबस्टर हम किसी से कम नहीं सी ए दिती सी, इसलिए इस फिल्म तो भी बहुत उम्मीद सी। फिल्म दा म्यूजिक आई डी बर्मन ने बनाया सी अते खासकर ऋषि कपूर दा गाना दिल लेना खेल है दिलदार का जो पहाड़ा विच शूट किया गया सी एक कल्ट चार्ट बस्टर बनया हुआ है। रिलीज होने ते दर्शकों को कहानी थोड़ी पुरानी अते किसी पिटी लगी जिसके कारण फिल्म थिएटर विच रिलीज हुई अते बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद विच साल बाद ना ऋषि कपूर दी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स उन्हां दी कॉमिक टाइमिंग अते बेहतरीन गाणियां ने फिल्म नूं यूथ ऑडियंस वल्लों वार वार देखण ते मजबूर कर दिता अते अज वी ए टीवी ते सब तो पॉपुलर हल्के फुल्के फिल्मां दे विचों एक है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

जी आनू जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी वन सर ओवर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राही बदल गए थे। फिल्म रिलीज हुई सी 1985 दे विच। रवि टंडन दे डायरेक्शन विच बनी राही बदल गए ऋषि कपूर दे करियर दा एक होर छिपिया होया हीरा है, जिसनू रिलीज होण ते पहचान नहीं मिली, जिसदे बाद विच हकदार सीगे उदो। इस फिल्म विच ऋषि कपूर ने शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरी वर्गे जानिया मानिया एक्ट्रेसिस दे नाल डबल रोल किया। फिल्म की कहानी गलत फहमिया प्यार और परिवारिक भावनावां विच फसे किरदारा दे इर्द गिर्द खूबसूरती नाल बुनी हुई है। आरजी बर्मन का म्यूजिक इसकी सब तो वड्डी USP सी। 1980 दे दहाके दे विचकार जद स्क्रीन ते एक्शन ते बेरहम विलन आम गल सी, इस शांत ते प्यारी लव स्टोरी नू थिएटर ते आम दर्शकां ने नकार दिता ते फिल्म बॉक्स ऑफिस ते पिछे रह गई। हालांकि अज दे समय विच जद लोग सिर्फ परिवारिक थीम ते मधुर म्यूजिक वालियां फिल्मां लभदे हैगे ने तां YouTube ते OTT प्लेटफॉर्म ते फिल्म दे व्यूज ते तारीफ साबित करती है कि इसने दर्शकां दे नाल गहराई नाल जुड़ा महसूस किया है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: ओनली गॉड कैन जज मी, दैट राइट, ओनली गॉड बेबी, नोबडी एल्स।
4: बंदी खिती आप नुख दी नक तक मेरे राह दी मकामा नाल, हो मेरे राह दी मकामा नाल पक ठक सहज सुभान।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 एफएम से आज के संदेश अलग दिनाल से बड़े हुए हो। अगली फिल्म हैगी है जेडी उसका नाम है जी आ ब्लॉट चले। ऋषि कपूर अपने पूरे करियर विच एक शानदार एक्टर सी पर एक डायरेक्टर दे तौर ते उन्होंने 1999 विच ऐश्वर्या राय ते अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म आब लौट चले बनाई जो उन्होंने दिल के बहुत करीब सी। ए फिल्म विदेश विच रहने वाले भारतीयों दे अपने कल्चर ते उन्होंने स्ट्रगल ते अपने मुल्क वापसी की एक खूबसूरत ते इमोशनल कहानी सी। रिलीज होने ते फिल्म की स्लो ते सीरियस कहानी दर्शकों को पसंद नहीं आई जिसका नतीजा ए रहा कि ए बॉक्स ऑफिस ते बुरी तरह दे नाल फ्लॉप हो गई। हालांकि अज दे दौर विच जद लोग फैमिली वैल्यू जोर देने वाला अपनी जड़ां दे वल लौटन वाला सिनेमा पसंद कर रहे ने तां ऋषि कपूर दा इकलौता डायरेक्ट एडवेंचर अपनी सीरियसनैस अते मेलोडियस म्यूजिक दे नाल एक मास्टरपीस दे तौर ते याद किया जाता है।

0: abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

हाँ जी, तो ये सी ऋषि कपूर दी दी बेस्ट फिल्मां जो पहला पसंद नहीं आईयां पर बाद विच बहुत ज्यादा पसंद आईयां, है ना। तो तुसी दसो कि थानू इन्हां दे विचों केड़ी सब तो ज्यादा पसंद है। फटाफट दे नाल छोड़ो रेडियो बिस्वानी वलसर ONM साडे फेसबुक पेज है जिहदे बिस्वानी @bisswani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी अपनाउणा चाहुंदे हैगे हो तुसी अपनाओ, साडा गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां हमेशा दी तरह यही वादा करना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। कल करदे मुलाकात, सत श्री अकाल।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आएगा

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी, आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में। जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ, लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े, वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोतों, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रस्वानी 107.1 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रस्वानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आप सभी सुन रहे हैं जी रेडियो ब्रिस्वानी और एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन लेकर चांदनी का सफर। एंड आई होप कि ये सफर आप सभी का हमेशा की तरह बेहतरीन में बनाने की कोशिश करूंगी और आपका ये समय जो है मॉर्निंग जो है बहुत ही खूबसूरत कहते ना खूबसूरती के साथ निखारने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी ताकि आप सभी का ये दिन जो है बहुत ही प्यारा प्यारा मीठा मीठा जाए। तो दोस्तों जी अगले कुछ टाइम तक मैं आप सभी के बीच लेकर आऊंगी दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी बड़ी खबरें, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन अपडेट्स, बॉलीवुड हॉलीवुड की गॉसिप्स और जी एंटरटेनमेंट म्यूजिक स्पोर्ट्स ना हो तो मजा कहां है। मौसम भी जरूर आपको मौसम का हाल बताएंगे। आखिर में फिर हम एक खूबसूरत से मोटिवेशनल मैसेज की बात करेंगे क्योंकि जी बहुत सारी गॉसिप्स होने के साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया और फिर हम देश और दुनिया की इधर उधर की खबरें इन्फॉर्मेशन जो है अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसके बाद कुछ मोटिवेशनल मैसेज जरूर होना चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत कुछ ज्ञात करता है और बहुत कुछ सिखाता है। तो आप चाय या फिर कॉफी तैयार रखिए क्योंकि जी शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर। तो आइए फिर सुनते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो दोस्तों, थोड़ी सी दुनिया की हेडलाइंस हम जानने थे कि आखिर दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप में आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में वैश्विक बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पर्यटन तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया इस साल जो है रिकॉर्ड संख्या में विदेशी पर्यटकों का स्वागत करने की पूरी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल स्टार नेस्टोरी इरान कुंडा के पुर्तगाल के क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन से जुड़ने की काफी खबरें जो है तेज है। अगर ये ट्रांसफर पूरा होता है तो ये भाई उनके करियर का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

स्वागत है जी एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन में। अगर हम वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक की तैयारियां तेजी से हो चुकी है स्टार्ट, और सरकार ने 17 नए और अपग्रेड किए जाने वाले स्पोर्ट्स वेन्यूज पर काम शुरू होने की जानकारी भी दी है। वहीं पर दोस्तों ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने 2032 ओलंपिक के लिए अपना भाई नया जो विजन है वो पेश किया है। इसमें जी नदी में वाटर टैक्सी, नए ग्रीन वॉकिंग और फिर साइकिलिंग ट्रैक, पार्कों का विकास और शहर को और भी आधुनिक बनाने की कई योजनाएं जो है उसमें शामिल है। वहीं पे दोस्तों अगर हम एंटरटेनमेंट दुनिया की बात करें भाई, तो ब्रिस्बेन के क्यू पैक में द लॉयन किंग म्यूजिकल ने टिकट बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। आम लोगों के लिए भाई टिकट खुलने से पहले ही प्री सेल में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। वहीं पे दोस्तों इस वीकेंड जो है ब्रिस्बेन में लीव फेस्टिवल, ब्लैक डे आउट और उर्जिला कार्सन जो है उसका कॉमेडी शो और कई लाइव म्यूजिक इवेंट्स होने वाले हैं, तो भाई तैयार रहे क्योंकि वीकेंड में आपको मजा आने ही वाला है। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद बॉलीवुड और हॉलीवुड में आखिर भाई क्या गॉसिप देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, आपको इन्फॉर्म करेगी आपकी दोस्त आरजे जाने जैन। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, आके सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं चांदनी का सफर एंड आशा करती हूँ आपको ये म्यूजिक गाना सुनकर अच्छा लग रहा है। तो आइए फिर बॉलीवुड और हॉलीवुड गॉसिप्स जरा हम सुनते हैं, आपको सुनाते हैं। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे जो हैं वो अपनी आने वाली जो फिल्म है उनकी शूटिंग में काफी बिजी है। आने वाले महीने में कई बिग बजट वाली फिल्में रिलीज होने वाली है, तो आप बस तैयार रहिए। वहीं पर अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड और ऑस्ट्रेलिया में 2026 के लिए बड़े बड़े म्यूजिक टूर जो है वो लगातार घोषित किए जा रहे हैं, जिससे कि लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी भाई एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वहीं पर अगर हम म्यूजिक की बात करें तो अगर आप लाइव म्यूजिक पसंद करते हैं ना दोस्तों, तो आने वाले जो ये महीने हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया में कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है अपने टूर लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, तो म्यूजिक लवर्स के लिए भाई ये साल बेहद ही खास रहने वाला है, मिस मत कीजिएगा। तो आइए इसी के साथ मैं मिस नहीं करूंगी आपको ये गीत सुनाना, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो वहीं पर अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया में ध्यान दें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल फैंस की नजरें जो है वो नेस्टोरी ईरान कुंडा के संभावित जो यूरोपियन क्लब है उसमें ट्रांसफर पर टिकी हुई है। अगर डील पूरी होती है ना तो ये जो ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं पर दोस्तों ब्रिस्बेन में आज मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। सुबह और शाम हल्की हल्की सी ठंडी महसूस होने वाली है जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। अगर बाहर निकल रहे हैं तो भाई थोड़ा सा शॉल स्टोर जरूर साथ में रख लें। वहीं पे दोस्तों क्या आप जानते हैं ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेजी से विकसित होने में जो शहर है उनको गिना जाता है, यानी कि जो ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया है सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से गिना जाता है। और 2032 ओलंपिक के बाद इसकी जो पहचान है वो दुनिया के फेमस ग्लोबल शहरों में और मजबूत होने की उम्मीद है। जी हाँ, तो चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं जाने का सफर। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है मोटिवेशनल कुछ ज्ञात और ज्ञान देने का, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए भी, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख हो सकता है, कोई किसी भी प्रॉब्लम में हो तो उसका भी आंसर इस स्टोरी में मिल जाए कि आप उधर रिलेट कर जाए। तो ये जरूर सुने, क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच लेकर आई हूं, तो ध्यान से जरूर सुनेगा। एक बार दोस्तों मिट्टी में ना दो बीज जो है साथ साथ पड़े थे। पहला बीज बोलता है कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, धूप देखना चाहता हूँ, बारिश को महसूस करना चाहता हूँ, अगर मुश्किलें भी आएंगी तो उनका मैं सामना तो कर ही लूंगा। और वो धीरे धीरे अंकुर बनकर मिट्टी से बाहर निकल आया। अब दूसरा बीज जो है उसे देखकर डर गया। उसने सोचा अगर बाहर आया और कोई मुझे तोड़ दे, अगर मौसम खराब हुआ तो अभी यहीं पर सुरक्षित हूँ, यहीं पे बैठा रहता हूँ। वो मिट्टी के अंदर ही पड़ा रहा। अब कुछ दिनों बाद एक चिड़िया आई और उसने मिट्टी में पड़े उसी बीज को चुग लिया, यानी कि उठा लिया। यानी दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिली? कई बार ना हम असफलता के डर से पहला कदम ही नहीं उठाते, लेकिन सच ये है कि जो लोग कोशिश करते हैं ना उनके पास आगे बढ़ने का मौका होता है, और जो सिर्फ डरते रहते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। तो दोस्तों आज का दिन जो है एक छोटा सा कदम उठाने का दिन बनाइए, क्योंकि हर बड़ा पेड़ ना कभी एक छोटा सा बीज ही था, तभी वो बड़ा हुआ है। तो ये थी आज की प्रेरणादायक बात, जो आशा करते हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसीलिए लाइफ में ना कभी भी डरना नहीं है आगे बढ़ने से, होगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम तो अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए ना। हमें अगर हम सोचे हमें ये प्राप्त करना है, हमें ये चीज चाहिए, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना जरूरी है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी जरूर मैसेज करके बताइएगा। और अब वक्त हो चुका है आपको टाटा बाय बाय कहने का, कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच लेकर जाने का सफर ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत एंड हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। श्रीलंका में डेंगू से 56 लोगों की मौत, जुलाई में 20,000 नए मामले। श्रीलंका पिछले करीब 10 सालों में डेंगू के सबसे बुरे प्रकोप का सामना कर रहा है। ये बीमारी इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि सरकार को इससे निपटने के लिए ड्रोन तैनात करने पड़े हैं। मिलिट्री ड्रोन की मदद से छतों और मच्छरों के पनपने वाली जगहों का पता लगाया जा रहा है और जगह जगह जमा पानी का पता लगाकर डेंगू फैलने से रोका जा रहा है। हिटलर के जन्म स्थान में खुला पुलिस स्टेशन। ऑस्ट्रिया ने जर्मन तानाशाह की भयानक विरासत को दी नई पहचान। ऑस्ट्रिया के ब्रैनो एम इन शहर में उस घर में एक पुलिस स्टेशन खोला गया है जहां जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। ये 17वीं सदी के पुराने सराय के बारे में सालों से चल रहे विवाद के बाद हुआ है। इसी घर में अप्रैल 1889 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सिक्किम टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, सभी शव बाहर निकाले गए। NHPC तीस्ता स्टेज 6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा। बचाव दलों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान को जारी रखा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में पोस्ट हटाए। IIT मद्रास ने छात्रों से इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर किया आगाह। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां इन छात्रों का नारा लगाकर बैनर पर अपनी बात लिखकर या फिर छोटे वीडियो बनाकर समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने छात्रों से कहा है कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियोस को हटा दें। IIT मद्रास के एक छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, यूनिवर्सिटी ने हमसे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में डाले गए इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने के लिए कहा है। तबीयत बिगड़ने पर जंतर मंतर से हटे अभिजीत दीप के। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप के की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तेज बुखार और शरीर में दर्द के कारण उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ा। इसकी जानकारी दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। आइए जुड़ते हैं अब खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 भारतीय खिलाड़ी 6 खेलों में उतरेंगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 खेलों में 215 गोल्ड सहित कुल 1,168 मेडल दाव पर होंगे। भारत के 125 खिलाड़ी 8 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जी शुभ दिन आयो। आज गुरुवार 30 तारीख जुलाई का दिन, सुबह सुबह मैं करती हूँ आपका स्वागत। कहते हैं ना कि सुबह एक नई उम्मीद, नया उमंग, नया जोश और नई चुनौतियों लेकर आती है, यानी ये सभी आपके लिए लेकर आती हैं, हम सभी के लिए। मगर इन सभी को करते हैं बगल और आपको कहती हूँ नमस्कार, कैमचो, सात श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो उम्मीद है कि आज बस खुशहाल है आप और आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को भी आगे लेकर बढ़ने के लिए एकदम तैयार है। ये जुलाई का महीना है एंड बस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है, तो खुश रहिए, चलते हैं। चलते हैं चेन्नई एक्सप्रेस की ओर।

जी बिल्कुल, अपना ट्रेन मिस मत कीजिए, काम पे पहुंचना है, ठीक है ना? या फिर गाड़ी ले जा रहे हो तो फिर गाड़ी में जाने वाले हो तो फिर ट्रैफिक के बारे में भी चिंता रहती है ना। मगर डोंट वरी, आज एक बहुत ही स्पेशल डे है मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है और वो है दोस्ती का दिन, ठीक है? आज एक इतना स्पेशल डे है क्योंकि मुझे पता है आप में से सभी लोगों के पास दोस्त तो जरूर ही होंगे ना, है ना? फ्रेंडशिप डे है आज। सो आज हम कुछ ऐसे गीत बजाएंगे आपके लिए और जो आपको अपने दोस्तों को, जो दोस्तों की याद दिलाएगी। दोस्ती एक ऐसा बॉन्ड है दोस्तों जो दिलों को जोड़े रखता है। ट्रू फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ होते हैं ना, चाहे हैप्पीनेस हो या सैडनेस। दोस्ती सिर्फ मजाक या गॉसिप तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग और अनकंडीशनल लव का नाम है। अ गुड फ्रेंडशिप आपके सीक्रेट्स को सेफ रखता है और आपकी सक्सेस में जेन्युइनली, याद रखे जेन्युइन वे वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, जेन्युइनली खुश होता है और होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे हो तो आपकी दोस्ती में कुछ ठीक नहीं है, ठीक है? तो जिंदगी की हर जेनी में दोस्ती का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वो कनेक्शन है जो कभी फेड नहीं होती है। और मैं हूं आज आपकी दोस्त, आपकी हम सफर पूरे 9 बजे तक। आज ऑफ कोर्स जतीश जी और एमी जी नहीं है आपके साथ, मगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं हूं शशि जोखन और आपका साथ मैं दूंगी, आपको तो पता ही है ना, 9 बजे तक आपका साथ।

हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं सुबह का सफर, और आज इस सफर पर मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। सो इसी तरह हम बस ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहेंगे और आपको लेकर चलेंगे आपकी दफ्तर तक, दफ्तर नहीं तो स्कूल तक, हाँ जी। सो याद रखिए, आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है और आज एक ऐसा दिन है जो दोस्तों की याद हमें दिलाती है। अगर आप अपने दोस्त से बहुत समय हो गए नहीं बातचीत किए हैं तो ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो किसी शर्तों के बगैर होता है। आज नहीं बात किए तो चाहे बरसों हो जाए नहीं बात किए, मगर फिर भी ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए आपका दोस्त वहाँ रहेगा, ठीक है, और सही एडवाइस देंगे वगैरह वगैरह, ये सब कहने की बात होती है, मगर आप एक आपको ये होना चाहिए कि आपके दोस्त जो है आप उन्हें समझ सकते हो। अगर आपको कहीं भी गड़बड़ी लगे तो ज़रूर ऐसे दोस्तों से अलग हो जाइए।

धर्मेंद्र और अमिताभ की फिल्म शोले से इस नगमा आपके लिए लेकर आए थे। मुझे पता है आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि दिस इज फ्रेंडशिप के लिए एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है। और हाँ जी, कहते हैं ना कि दोस्ती के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये होती है कि दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ दे, ठीक है, जो मुश्किल वक्त में साथ दे और आपको सही एडवाइस दे। सो रिश्तों में, रिश्तों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती है और दोस्ती में बड़ी कोई इबादत नहीं होती है। और सच्चे दोस्त जो होते हैं ना, वो किस्मत वालों को ही मिलते हैं, ठीक है। वैसे तो भीड़ बहुत हमारे आजू बाजू होते हैं ना, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मगर इस भीड़ में सिर्फ चंद ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सच्ची में आपका साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों का मिलना एक इत्तेफाक नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। चलो सुनते हैं के जी, जो आज हमारे बीच नहीं है।

जी, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। तो आप सुन रहे थे कैके की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। उन्होंने हमें देखकर इस दुनिया से ही अलविदा कह गए और आज एक दोस्ती का मिसाल वो बन गए हैं। एंड हाँ जी, ऐसे होता है दुनिया में, कई हमारे ऐसे दोस्त आते हैं जीवन में और बहुत ही समय से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, मगर कोई बात नहीं, उसको हम छोड़ते हैं। आज हैप्पी हैप्पी डे है, आज फ्रेंडशिप डे है। अगर आप अपने दोस्तों से बहुत समय हो गए नहीं बात किए हैं तो ज़रूर उनसे बातें कीजिए। एंड हाँ जी, उन्हें बताइए कि कभी कुछ गम हो, कुछ तकलीफ हो, खुशी हो या गम हो, कुछ भी हो, आप वहां पर हैं उनके लिए। तो एक दो दोस्तों से, तीन दोस्तों से आप ऐसी बातें कहेंगे तो अगर उनके जीवन में कुछ हो भी रहा होगा तो उनको लगेगा कि आज मेरे साथ कोई सच्चा दोस्त है। ठीक है, तो दोस्ती वो नहीं है जो जान देती है, ठीक है, दोस्ती वो नहीं है जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो सिर्फ मुस्कान देती है। सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। सो ये ज़रूर याद रखिएगा। एंड जैसे हमने पहले कहा कि आज एमी एंड जतीश जी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, मैं आपका साथ दूंगी 9 बजे तक।

0: याद मेरी जिंदगी।
1: हाँ जी, ये फिल्म जंजीर से इस नगमे को हमने आपके लिए चुन कर लाए हैं। इसमें आप देखे होंगे कि प्राण के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ प्राण स्क्रीन पर दिखे थे, और आज तो वो ये जो गीत है एक बहुत ही स्पेशल कव्वाली जैसा आप इसे कह सकते हैं। कहते हैं ना कि जो हर पल चलती है उसे जिंदगी कहते हैं, जो हर पल चलती है उसे जिंदगी कहते हैं, जो हर पल जलती है उसे रोशनी कहते हैं, जो हर पल खिलती रहे उसे मोहब्बत कहते हैं, जो साथ ना छोड़े उसे दोस्ती कहते हैं। सो आज की जो फ्रेंडशिप डे, आप सभी को मुबारक हो। एंड मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाए। और याद रखिए, आज कम से कम एक दोस्त से तो बात करनी है आपको, ठीक है ना? जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो दिन है ये भी बहुत खुशनुमा है, और आज धूप निकली हुई है एंड मौसम आज बहुत ही अच्छी है। लगभग 10 से अभी 10 डिग्रीज है, और बाद में चलकर 20 तक पहुंच सकती है। सो इट्स अ वेरी नाइस सनी डे, एंड आप बाहर भी निकल सकते हो। अगर घर पे हो तो कुछ यार्ड में काम वगैरह कर लीजिए, हेल्थ भी आपका ठीक रहेगा और थोड़ा मन भी बहला रहेगा, ठीक है ना? तो ऐसा ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए कि हम कुछ देर तक घर से बाहर ज़रूर निकले। अगर नहीं निकलेंगे तो तबीयत बिगड़ सकती है। फ्रेश एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना? घर से तो निकल ही गए होंगे आप।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा
3: या
2: ओके सॉफ्ट
3: सॉफ्ट अब लाउड या
4: जी याद रखिए चांद अधूरा है सितारों के बिना चांद अधूरा है सितारों के बिना गुलशन अधूरा है बहारों के बिना समुंदर अधूरा है किनारों के बिना और ये प्रोग्राम अधूरा है आप जैसे दोस्तों के बिना सो जरूर साथ दीजिए हम रहेंगे आपके साथ पूरे 9 बजे तक तो आगे बढ़ते हैं फिल्म सैयारा से ये गीत आपके लिए आप कहीं पर भी कार्यक्रम सुन रहे हैं स्वागत है आपका

बहुत ही बढ़िया सा ये नगमा, एंड बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। इस तरह के गीत भी लोग पसंद करते हैं, सो हमने सोचा कि चलो आपके लिए ये गीत भी पेश कर दूं। और जब इसी मूड में हम हैं तो फिर ये नगमा तो बनता ही है, ठीक है? सो एंजॉय दिस।

हाँ जी, अगर आज आपका जन्मदिन है तो तहे दिल से आपको याद कर रही हूँ और विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड आरुष का भी बर्थडे आने वाला है, सो एनीवे हैप्पी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। सो अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको मैं आज कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आज एक बहुत ही स्पेशल सिंगर जिन्होंने हमें कई बरसों से अपनी आवाज आवाज की जादू से हमें एंटरटेन किया है और हमें हर तरह के गीत और हर तरह के मूड के गाने हमें सुनाए हैं, और वो सिंगर है और कोई नहीं मगर सोनू निगम। जी हाँ, आज सोनू निगम का जन्मदिन है, तो चलो आपको उन्हीं के आवाज में ये स्पेशल सॉन्ग सुनाते हैं। ठीक है?

जी आपको भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे सोनू निगम जी, एंड वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ. पूरी हो दिल की हर तमन्ना आपकी, हमेशा हमेशा रहे आप खुश और मुस्कुराते रहें आप, और आपकी जो तबीयत है वो भी बस खुशहाली रहे. अभी बीच में आप कुछ ठीक नहीं थे, मगर नसीब और अच्छे हो आपके, और इसी तरह आप हमें एंटरटेन करते ही रहें, और खुद ही अपने बर्थडे के दिन अपने ये जो नगमा गाए हैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग, मुझे तो बहुत ही खुश कर दिया आपने. एनीवे चलो, आप में से जितने भी लोगों का बर्थडे है, वाओ, हैप्पी बर्थडे आपको एक बार फिर. मगर हम सुनते हैं सोनू निगम के ही आवाज में एक और नगमा, एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस. ओप्स, या एंजेला जी, कैसी हो आप? रेडियो सुन रही हो आप? उम्मीद है आप एंजॉय कर रही हो. सोनू निगम, अलका याग्निक और कुमार राठौर मिलकर इस गीत को जान दिए हैं.

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा या
3: या
2: ओके सॉफ्ट
3: या सॉफ्ट
2: या
3: अब लाउड या
4: हाँ जी सुबह का सफर आप सुन रहे हैं मैं शशि जोखन आज जतीश जी और एमी की जगह पर आपका साथ दे रही हूँ

हाँ जी, आप सुन रहे हैं सुबह का सफर, और पूरे 9 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी। और हाँ जी, मुझे पता नहीं है कि आप सुने हैं या नहीं, मगर ये बहुत ही दुख की खबर है कि देवानंद, जो आप में से कई लोगों के चाहते हीरो रहे हैं बॉलीवुड की दुनिया के, जैसे उन्होंने कई हमें ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं जैसे कि जब प्यार किसी से होता है, असली नकली, तेरे घर के सामने, याद है आपको ये सब, तेरे मेरे सपने, ये जो फिल्म गाइड का ये नगमा बहुत ही पॉपुलर हुए थे, उन्हीं का फिल्म गाइड, और उन्होंने फिल्म जीवल और तीन देवियाँ, ऐसे बहुत से फिल्में हैं जो उन्होंने हमें दिया, फिल्म दुनिया, हरे रामा हरे कृष्णा, हीरा पन्ना। एनीवे, आज तो वो हमारे बीच नहीं है, मगर बहुत ही दुख की बात है कि उनके जो बेटे बेटे का देहांत हो चुका है, एंड उनके बेटा जो लंदन में रहते थे, सुनील आनंद, ये लगभग 70 ईयर्स के हो गए थे, और हो गए थे 70 का, जी हाँ, मगर कई कुछ समय से वो अनवेल थे और उन्हें हार्ट का दौरा हुआ, और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इसी की वजह से उनका देहांत हुआ है। उनकी माँ कल्पना कार्तिक और उनकी सिस्टर देवीना वहाँ उन रहते हैं। देखिए, ऐसे हो जाता है जीवन में कभी कभी। हम उनके पिता कोई फिल्में देखते थे, मगर आज उनका बेटा का देहांत हो गया है। ये बहुत ही दुख की बात है, मगर चलो, ये तो जीवन की रीत ही है ना। उन्हीं की फिल्म, देवानंद की फिल्म से ली गई ये नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं, फिल्म पेइंग गेस्ट का ये नगमा।

0: जवाब तुम्हारा।
1: हाँ जी, ठंड बहुत ज्यादा है अभी ब्रिस्बेन में, है ना, मगर धूप निकली हुई है और जब धूप निकलती है तो जी खुश हो जाता है ना। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द डे। और अभी तो इस दुनिया के इस तरफ पर जो हमारा मौसम है ना, ये विंटर का मौसम है, सो ऑब्वियसली ठंड कुछ होगा, मगर ठीक है। जब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी तकलीफ होती है ना। सो जस्ट एन्जॉय द गुड वेदर, एंड थोड़ी ही देर में जब और थोड़ा गर्मी होगी तो आपको अच्छा लगेगा। मगर चलो, वैसे अभी आप घर के काम कर सकती हो, घर के अंदर काम कीजिए, फिर जब थोड़ा और ज़्यादा धूप निकले तो आप बाहर निकल सकती हो। सो एनीवे, एक और नगमा सुनते हैं, और ये भी देवानंद की ही फिल्म से ली गई है, फिल्म जीवल थीफ से, एक बार फिर ये दिल ना होता बेचारा। सो आप इसे सुनिए। ये 1967 की फिल्म जीवल थीफ थी, किशोरदा की आवाज में।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: चलो एक और गीत हम सुन लेते हैं, और इस बार फिर से देवानंद की ही फिल्म से ली गई है। एंड देवानंद के बारे में तो हम जितना भी कहे बस कम ही रहेगा ना।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: देखिए, आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि आप सीधे फोन कीजिए एंजेला को रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर, एंड ऑफ कोर्स वो आपको एडवाइस करेंगी, राय देंगी कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मगर चलो, अभी तो हम बातें कर रहे हैं, देवानंद जी के फिल्मों के गाने हम सुन रहे हैं, एंड खास तौर से आज हम देवानंद जी के गाने बजा रहे हैं क्योंकि जैसे हमने कहा कि उनके बेटे का निधन हो गया है लंदन में हार्ट टेक की वजह से। सो ये बहुत ही एडवाइस करेंगी, राय देंगी कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मगर चलो, अभी तो हम बातें कर रहे हैं, देवानंद जी के फिल्मों के गाने हम सुन रहे हैं, एंड खास तौर से आज हम देवानंद जी के गाने बजा रहे हैं क्योंकि जैसे हमने कहा कि उनके बेटे का निधन हो गया है लंदन में हार्ट अटैक की वजह से। सो ये बहुत ही दुख की बात है, मगर हमने

बेहद सदाबहार अभिनेता, निर्देशक तथा निर्माता थे, और उनका असली नाम धर्मदेव पिशोलीमल आनंद था, और उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था, और गुरदासपुर कहते हैं उस इलाके के नाम, अब वो पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। एनीवे, उन्हें उनके खास स्टाइल, तेज चाल और रोमांटिक अंदाज के लिए एवरग्रीन हीरो भी कहा जाता था, और 3 दिसंबर 2011 को लंदन में ही उनका निधन हुआ था। तो चलो उन्हीं के फिल्म का एक और गीत हम सुनते हैं, और इस बार ये फिल्म 1955 का फिल्म मुनीम जी से हमने इस गीत को आपके लिए चुनकर लाई हूँ। तो देखिए, इनके पुराने समय के जो गाने होते थे, उनकी सिंगर्स की जो आवाज़ होती थी और क्लैरिटी होती थी, ये सब बहुत ही क्लियर आज भी हमें सुनाई देती है। तो आप सुनिए इसे एंड एडमायर कीजिए, क्योंकि ये 1955 की फिल्म का गीत है।

0: केवल अपने नियरेस्ट डेयरी सुपरमार्केट और पेट्रोल स्टेशन पहुंचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 टॉप अप। आप वेबसाइट www.digicelinternational.com विजिट भी कर सकते हैं डिजिसेल टॉप अप अपने फैमिली को फीजी देने के लिए। पैसा भेजने के लिए आवर पार्टनर क्लिक एक्सप्रेस पिक इज द इजिएस्ट वे टू सेंड मनी टू डिजिसेल फीजी। केवल आपको रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर। डिजिसेल, वी आर बेटर टुगेदर।
1: चलो यहाँ से जो गीत हम बजाते हैं आपके लिए भी बजा रहे थे, यहाँ से इसके मोड़ को बदलते हैं, लेकर चलते हैं देवदास की ओर।

सुबह के सफर में आपका स्वागत है। रेडियो ब्रिजवानी 1701 आप सुन रहे हैं। मैं शशि जोखन आपका साथ दूंगी पूरे 9 बजे तक।

हाँ जी, फिल्म देवदास एक बहुत ही क्लासिक मूवी बन गई है और इसमें शाहरुख खान और उनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने जो किरदार है उसको अदा की और उनके साथ साथ माधुरी दीक्षित। एंड देवदास तो पहले भी ये फिल्म बन चुकी थी, आप जानते ही होंगे, मगर ये जो बाद में लीला संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाई, सो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के सॉन्ग्स भी, जो भी लिरिक्स इसमें लिखा गया है प्लस सॉन्ग्स, सिंगर्स ने भी बहुत ही अच्छी तरह भी सुन रहे थे ये गीत। ये श्रेया घोषाल की आवाज़ में थी एंड श्रेया घोषाल अभी बहुत सारे सिंगर्स विदेश के दौरे पर हैं, शोज कर रहे हैं एंड जो भी आए आप उसमें भाग लेने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि हाँ मुझे पता है आप ये सब सॉन्ग सुनते ही रहते हैं, मगर जो लाइव शोज होते हैं ना उसकी जो एम्बियंस होती है और जो सिंगर्स होते हैं जो खुद आपके सामने गाते हैं, ये सब बहुत ही क्या मैं कहूँ, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप हो सके तो ज़रूर जाइए, क्योंकि हर बार तो नहीं आते रहते हैं शोज ना, तो रेडियो ब्रिजवानी हर बार सपोर्ट ही करते रहते हैं ऐसे शोज का। सो कभी भी शोज लेकर आए तो आप ज़रूर, हम लेकर आए तो आप ज़रूर उसमें साथ दीजिए, क्योंकि लोग कहते रहते हैं कि शोज नहीं आते, जब शोज आते हैं तो लोग जाते नहीं हैं, तो ये गड़बड़ी है, ठीक है, मगर ब्रिजबन में तो हाउसफुल ही रहते हैं मजोरिटी ऑफ द शोज, और ये जब रेडियो ब्रिजवानी साथ होते हैं तो होता है मुमकिन।

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सुन रहे थे। ये रिसेंट फिल्म का सॉन्ग है। और एनीवे, रिसेंट नहीं, मेरे ख्याल, मैं क्या मीन कर रही हूँ, ये 50s 60s के गाने नहीं है। सो एनीवे, मैं भूल ही गई थी आपको बताने के लिए कि फिल्म रामायण आप सुने ही होंगे, बहुत चर्चित है, चर्चा में बहुत ज्यादा है। रामायण पार्ट वन का ट्रेलर को लेकर नया अपडेट सामने आया है, और नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का ट्रेलर कब और कहाँ आने वाली है, इसका खुलासा हो गया है। एंड 30 जुलाई, जो आज का दिन है, को सुबह 4:15 बजे 4,000 करोड़ की रामायण का ट्रेलर 4 मिनट 15 सेकंड में दिखेंगे, श्री राम से लेकर रावण तक, ठीक है। और ये फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी, जिसमें एक खास अंग्रेजी संस्करण भी शामिल होगा, ठीक है। सो अब कई भाषाओं में लोग इस फिल्म को देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि रामायण क्या है, रामायण की जो गाथा है ये क्या है। सो एनीवे, चलो, हमने सोचा कि फिल्म रावण से ये नगमा आपके लिए लेकर आऊं, एंड आप सुन सकते हैं इस गीत को। और आप सुन रहे हैं ऑफ कोर्स सुबह का

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हाँ जी, अब हमारा समय होने ही वाला है, कुछ ही देर में हम यहाँ से निकलेंगे। और मगर जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी की बात को दिल से मत लीजिए, किसी की बात को दिल से मत लीजिए। जैसा जिसका संस्कार होता है वैसे ही उसका व्यवहार होता है। मगर देखिए, हम सभी साथ साथ हैं, रेडियो ब्रिजवानी का साथ आप भी दीजिए और इसी तरह आप आगे चलते रहेंगे हमारे साथ, हम भी आपको लेकर आगे बढ़ते ही रहेंगे। सो आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल एक बार फिर मैं आपका साथ दूंगी, तो आप भी ज़रूर सुबह 7 से 9 बजे तक मेरा साथ दीजिए। मेरी ओर से मैं शशि जोखन आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा साथ दिया। बस जुड़े रहिए, कुछ ही देर में आ जाएगी सताक्षी। हम साथ साथ हैं।

नमस्कार, आदाब, वेलकम। एक बार फिर से एक नई सुबह हो चुकी है और इस नई सुबह के नए से आगाज के साथ आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी सताक्षी। जहाँ नया सा दिन है, नई खूबसूरती है, नए गोल्स हैं, नए सपने हैं और इन सपनों को बेटर तो हमें बनाना है। वैसे इस सुबह कैसे हैं आप सब? देखिए, अगर अभी तक आप ब्लैंकेट के अंदर हैं और क्लॉक देख रहे हैं एक आंख खोल के कि बाहर निकले कि ना निकले, तो भाई उसे बंद कीजिए, अलार्म को बंद कीजिए, साइड में रखिए और उठ जाइए, ठंडी हवा का झोंका फील कीजिए, विंडो पर जाइए, अपनी विंडो को ओपन कीजिए और एहसास में डूबिए कि यार ये सुबह कितनी खूबसूरत है और इस सुबह के साथ आपका दिन कितना बेहतरीन होने वाला है। फिलहाल बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाते जाना है, लेकिन उसकी शुरुआत इस अगले ट्रैक के साथ होनी चाहिए, है ना? तो एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए छापन सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर। बहुत जबरदस्त किस्से आपके साथ बांटे जाएंगे इस ट्रैक के उस पार। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक, रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके पहले कि आपके साथ आज की बातें करूं, सबसे पहले उन्हें विश कर दूं जिनका आज बर्थडे है। सो बर्थडे बेबीज, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और बस दुआ इतनी है कि यार जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कदम से कदम मिलाते रहिए और चलते रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अभी जीतना है, हासिल करना है। जिनके लिए आज दिन इसलिए खास है क्योंकि आज वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी, सो यार एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, आपके रिश्ते को डिसबैलेंस करेंगे और आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि ये कहना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के साथ अगर विश्वास का रिश्ता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। और जिनके लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। ये प्लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

जहाँ इट हैपेंस सुन रहे आप सताक्षी के साथ आपकी अपनी रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इस बार इट हैपेंस का साथ जो इस वक्त आपके साथ है बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये सुबह आपके लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा चलिए बात करते हैं अपने गोल्स की। यू नो हम सबके पास ना एक विश लिस्ट होती है और एक होता है गोल, मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये पाना है, ये होती है आपकी विश लिस्ट। लेकिन पता आपको विश लिस्ट और गोल में फर्क क्या होता है? देखिये विश लिस्ट सिर्फ आपके दिमाग में होती है, आप उसे कभी भी ना एक पॉसिबल वे के जरिए आप उसे अपनी ड्रीम से सच्चाई नहीं बना पाते। और गोल जो है वो कैलेंडर में होता है। सो अगर आप अपने सपने के आगे कोई डेट नहीं लिखते हैं ना, तो वो सपना सपना ही रह जाता है, आपकी विश लिस्ट ही रह जाता है। तो इसलिए अपने सपने को अगर आप सच्चाई में सामने लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेप लीजिए, चाहे सबसे छोटा ही क्यों ना हो वो स्टेप, बट उठाइए जरूर ताकि आप अपने गोल की ओर बढ़ सकें। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

क्या कहेंगे, आय हाय, बड़ा ही फेमस डायलॉग है। अगर फेल हो गए तो हमारा दिमाग यू नो हमेशा हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन आज सताक्षी आपसे एक सवाल पूछती है, अगर आप कामयाब हो गए तो, इस अगर को कभी दूसरे एंगल से देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी आदत है ना नेगेटिव साइड को ही देखने की। यू नो लोग हमेशा आपके रिजल्ट पर ताली बजाते हैं, आपकी मेहनत पर नहीं। तो लोगों की बातें सुनना बंद करिए और अपने काम की आवाज को थोड़ा और तेज करिए। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: टीचर प्रस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। अभी हम आ गए हैं गानों की हैट्रिक में। जी हाँ, चलिए मिलकर लगाते हैं गानों की हैट्रिक। 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए सताक्षी लेकर आई है, और आज का ये पहला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं। हमारे 3 बैक टू बैक ट्रैक्स का ये सफर है जिसे आप हर रोज सुनते हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर। आइए इस सेगमेंट में अभी ये अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

गानों की हैट्रिक में हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये लास्ट ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो गानों की हैट्रिक के बाद आपसे होने वाली हैं, सो तैयार रहिए उसके लिए। और इस अगले ट्रैक के साथ आइए बढ़ते हैं सफर में आगे।

सुपरस्पानी पर सदाक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। भाई रेंटल बॉयफ्रेंड, इस टर्म को सुना है आपने? हाँ, देखिए ये टर्म जो है इसकी शुरुआत हुई थी जापान से और अब ये इंडिया में भी अपने पैर पसार रहा है। रेंटल बॉयफ्रेंड क्या मतलब है इसका? भाई जैसा कि वर्ड बता रहा है, रेंटल बॉयफ्रेंड मतलब किराए पर बॉयफ्रेंड का मिलना। अच्छा, ऐसा होता था ना कि पूरे ग्रुप में सबके पास अपने बॉयफ्रेंड्स हैं लेकिन एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है और वो डायलॉग मारता था ना कि बॉयफ्रेंड क्या किराए पे मिलता है जो उठा लूं। तो हाँ भाई, अब बॉयफ्रेंड किराए पे मिलता है और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए ये रेंटल बॉयफ्रेंड आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्दी ट्रेंड चल पड़ा है और इस ट्रेंड के चलते लोग मूवीज जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, रेंटल बॉयफ्रेंड हायर कर सकते हैं और स्टेटस सिंबल की तरह है ये। लेकिन ये ट्रेंड जब मैं पढ़ रही थी, जापान तो एक खैर अदर लेवल कंट्री है, लेकिन इंडिया के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि यार कहाँ आ गया है सब, किस ओर आज का यूथ जा रहा है, लोग जा रहे हैं। मतलब हम बेसिकली देखा जाए तो स्टेटस सिंबल है ना कि भाई सबके पास है, हमारे पास नहीं है तो हमें भी दिखाना है कि हमारे पास तो है, बट क्या ही यूज है इसका? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। आई डोंट नो कि क्यों ये स्टेटस सिंबल इतना हाई होता जा रहा है हमारा कि हमें रेंटल बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। आपका इस बारे में क्या थॉट है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ हैं आप।

यार, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में भी देखा, और अब हम देख रहे हैं भारत में। हजारों बच्चे सड़कों पर हैं और किस तरह से उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, इस मोमेंट को, प्रोटेस्ट मोमेंट को दबाया जा रहा है। वो देखा जाए तो दोनों साइड मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना साइड भी है, क्योंकि इसके पहले भी पेपर्स लीक होते रहे, लेकिन बहुत सारे सिलेबस चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशन मैनेजमेंट में सुधार भी हुआ है इस दौरान, भारत की बात करूं तो। उसके बाद एकदम से इस तरह का आंदोलन आना, डेफिनेटली स्टूडेंट्स की आड़ में बाकी की पार्टीज अपना मुनाफा तो कमा रही हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमेशा जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। तो जनता का सेवक होने का मतलब ये था, इस वक्त इस इतना आंदोलन बढ़ता ही नहीं, आई गेस, अगर नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट्स के बीच पहुंच जाते। इस मोमेंट में कई नेता शामिल हो चुके हैं, कई अभिनेता अभिनेत्रियां शामिल हो चुके हैं, मतलब बॉलीवुड भी इस मोमेंट में खड़ा है, कई बड़े लोग शामिल हो चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग अगर इस मोमेंट का हिस्सा ना बनते, जाकर बात करते स्टूडेंट्स से, तो पार्टीज को, जो अदर पार्टीज हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता और शायद ये हालत नहीं होती। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल उल्टा काम किया है, उन्होंने बच्चों को पर डंडे चलवाए, उन्होंने बच्चों को मरवाया और उन्हें सप्रेस करने की, उन्हें दबाने की कोशिश की, जो आई थिंक, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आई गेस ये गलत है। आपकी राय क्या है, हमारे साथ बांटिएगा। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रहे हैं, एंजॉय कीजिए और सताक्षी को सुनते रहिए।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Queensland di navi sarkar Brisbane layi vadde kaam poore kar rahi hai. Asi 50 cent de kiraye pakke taur utte lagu kar dete han. Asi hor vi vadde doctor muhaiya karwa rahe han ate Prince Charles ate Royal Brisbane varge hospitalan vich vadde sudhar lya rahe han. 1600 hor police karmi ate hor sakht kanoon lya rahe han. Sthani school ate khed clubban vich vadde sudhar lya rahe han. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।